0: को सैंपल दिखा दो, पसंद आ गया कंसाइनमेंट भेज दो।
1: ठीक है,
0: टेक केयर।
1: ओके।
0: रूम नंबर 224 के गेस्ट मेरे हैं, उनका जो भी बिल बनता है मेरे अकाउंट में डाल।

0: रेखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो।
1: अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात, एक होने पे
2: तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना साला, तुम्हारी वजह से बिगड़ा ही है।
1: मैं तेरा मुनीम हूँ, लोग क्या कहेंगे।
2: तू क्या करता है वहाँ पे? वो साले गुंडे मोबालियों के साथ में, तो तेरे को दो वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। अरे क्या क्या बकबक कर रहा है।
1: अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है।
2: अरे चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल।
3: क्या आसरा है? क्या आसरा है?
4: तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता।
2: अरे नहीं बैठे तो ना सही।
5: तू मेरे को एक बात बता पहले।
4: क्या?
5: मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो?
4: ना, ना, ना,
5: मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो?
2: बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर।
5: बेटे रंडीबाजी तो नहीं करते हो ना?
2: अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है?
5: ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है?
1: कन्फर्म करोड़, एक करोड़। चल खाना खाके गाना गाते।
6: പെയിന്ററായ ദിൻകർ പടേക്കറുടെയും സഞ്ജനാബായി പടേക്കറുടെയും മകനായി 1951 ജനുവരി 1 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ്ഗഡ് ജില്ലയിൽ മുരൂഡ് ജജ്ജിറായിലാണ് വിശ്വനാഥ് പടേക്കർ എന്ന നാനായുടെ ജനനം.

0: की।
1: अरे चुप कर चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को। औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है लगे फैलाने, मुंह दिया है लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली बाइक।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को। सब साले मुर्दे, जिंदा लाशे, किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या है? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना, जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता, ए ला चल चल।
1: क्रांति वीरिल കണ്ടത് മരണഭീതി ഇല്ലാത്ത ഒരു അഭിനയ വീര്യമായിരുന്നു. നാനാ പടേക്കർ മഹാപ്രതിഭയ്ക്ക് റേഡിയോ മലബാറിന്റെ പ്രണാമം.